सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रखनी अंग संग सहायो नाल नस प्रीत संधु लंगराले पंड हजार रुपया आदर कर दे पातशाह कृपा करनी सेवकां दी सेवा थाय पावनी मनोकामना पूर्ण करनी शुक्राने वजाओ अमरीन सुध

संग रागनी पांचा थाप है गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राको संग संग लाई मारू मा संग मेवारा प्रबल चट खौ सक उभारा खौ कटौ भौर आनंद गाए अष्ट माल को संग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरे ले पार जा संग लाई पाचा आर जा सुरमा नंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओह आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कच्छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सम्मिल श्री राघव गावहे पांचो संग परंगन लावहे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आसावरी तै पाछे सिंधवी अलापी।

जी गुरु गरीब निवास अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां भरदे हुए गुरु की संगत वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे हुए बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप जानी जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता

जहाँ दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गह द्वार द्वार माहे गह के लाज गोविंदा सवार दोहरा राज करेगा खालसा आगे रह ना कोई द्वार होए सब लेंगे बचे श्रम जो हो दोहरा उड़गे सुबह मलेश के करकोड़ा पासा डंगा वाले फते का नह कलंगतार तत्र चक्रवर्ती चतार चक्र भूते स्वयंभ सुभं सर्वदास जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग भूते देख तेगो फतेह नसरते दुर्ग्याप्तज अजनान गुरु गोविंद सिंह जी से अकाल पुरुष सहाय दरबार में त्रिदरबारा सच खंड वसे निरंकारा।

अकर्मंग भरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तु प्रणामे समस्तु प्रणासे अगंजुल अनामे सम

सदा सच्चदानंद सत्संग प्रणासी करी मुलक निंदा समस्त निवासी अजायब विभूते अजायब गनी में हरियंकरी मूल रही में चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र भुगते स्वयं भाव स्वभंग सर्वदा सर्व युगते दुकालंग प्रणास

पुरख अभगत अविनाशी लोग चतर जत जोत प्रकाशी हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सर जाना अदमय अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलग रूप अच्छे अनभेखा राग रंग जय रूप ना रेखा बरन चेहन सब होते न्यारा आद पुरख अद

बरन चहन जय जात न पाता, सत्र मित्र जय तात न माता, सबते दूर सबनते नेरा, जल थल महियल जाहे बसेरा। अनहद रूप अनाहद बानी, चरण शरण जय बसत भवानी, ब्रह्मा विष्णु

सर्व ज्योत के बीच समाना, सब हूँ सर्व ठार पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात जह चेहना बरना, अवगत देव अक्षय अन भरमा, सबको काल सबन को करता, रोग शोक दोकन को हरता, एक चेत जह एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत होके चेतना को चार कियो, कत हूँ अचेत होके सोवत अचेत हो, कत हूँ भिकारी होके मांगत फिरत भीख, कहूँ महादान होके मांगे धन देत हो, कहूँ महाराजन को दीजत अनंतान, कहूँ महाराजन छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जाज गंधर्व रक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर विषाद कहूँ प्रेत हो, कहूँ हो के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपे हो, कहूँ हो के तोर का पुकारे मांग देत हो, कहूँ कोव काव हो के पुराण को पढ़त मत का तुहूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विसी कहूँ इंद्र पद विच पाय छीन लेत हो, का तुहूँ विचार विचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पार नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शत्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ महारत हारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठार कामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ घंटी धरे ब्रह्मचारी कहूँ योग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे को डंडी होय पतारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो, कतहूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन का कहूँ छत्री हो के अरे मारत मरत हो, कहूँ भूम भार को उतारत महाराज कहूँ भव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीतनाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कतहूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो, कतहूँ मयूक कहूँ मद पान हो, कहूँ महासुर हो के मारत मासन का कहूँ महादेव देवतान के समान हो, कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजं कहूँ स्वतता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जाति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छैल भारी कहूँ छक्के बारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ पेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचे कहूँ नर को आकार हो, कहूँ बेदवानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दोमानी महामान हो, विद्या के विचारों के अदम्य अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो, जोवन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ कांति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ बार देत कहूँ छल सिंह छिनाए ले सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो, तो प्रसाद सवैये श्रावक सोत समूह सिद्धान के देख फिरियो घर जोग जति के
सुर सुराद सुत सुदादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे मत को ना देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जन संग अनूप तंग तुरंग सवारे कोर तुरंग तुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूत भली बेद न्यावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगी पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहान दया दम दाम सो संजम नेम अनेक विशेख वेद पुराण कतेब कुरान जिमीन जमान समान के पेख पौन हार जति जधार सब सो विचार हजारक देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सो दुष्पा दुरंत दुपा सो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर बवासन मध्य मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बड़े आर विचारे सार की धार भछैया तोर देर मलिन बवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार तो बातन ही जग चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक देवैया दानव देव फनिन साचर भूत भवेग भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब था पाएंगे पुण्य प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग शत्रु सबे अवलोक छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधम जान त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान के जादिक दान अनेक स्वयं पर साज भरेंगे ब्रह्मेसर विषण सची पदांत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपात के प्रास है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो दो दो लोचन मूंद के बैठ रहे भग ध्यान लगायो नाद प्रिय लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास की ओ बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साचे कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहुले पाहन पूज धरियो सिर काहुले लिंग करे लटकायो काहू लखियो रवाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो को भूतान को पूजा दैवत को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद

कर अनभेज रूप तुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भान चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार वकत बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत प्रसाद रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं निवली कर्म करंत कहूं पौन हार तुरंत कहूं तीरा दान अपार कहूं जग कर्म उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद सिंह विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर संत कहूं कर जल मह जाप कहूं तह कहूं सहत तन प्रताप कहूं बाद बनह करंत कहूं ताप तनह सहंत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहत अभरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं शेख ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंक राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कहीं ब्रह्म वेद रटंत कहीं शेख नाम उच्चरंत बैराग कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास।

ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬਿਤ ਖੂਕ ਮਲ ਹਰੀ ਗਜ ਗਦ ਹਾਂ ਬਿਬੂਦਾਰੀ ਕੇ ਦੋਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰੋਈ ਕਰਤ ਹੈ ਘੁਗੂ ਮੱਡ ਵਾਸੀ ਲਾਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਵਰ ਸਦੇ ਮੋਨ ਸਦੇ ਮਰਤ ਹੈ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਾ ਤਾ ਹੀਰ ਕੀ ਵਟਿਆ ਦੇ ਬੰਦਰਾ ਸਦੀ ਉਪਾਏ ਨੰਗੇ ਫਿਰਤ ਹੈ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਛੀਨ ਕੈਸੇ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ ਛੇਤ ਛੋਨਾ ਸਭੇ ਦੂਜਾ ਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਕੇ ਆਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਭਛਈਆ ਧਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ ਤੇ ਤੋ ਗਊਨ ਕੇ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਗ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਭ ਕੇ ਉਡਿਆ ਤਾਏ ਪੰਛੀ ਕੀ ਵਡਿਆ ਦੇ ਬਗਲਾ ਬਿਡਾਲ ਬ੍ਰਿਗ ਧਿਆਨੀ ਠਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨੋ ਜਾਨੀ ਪੇ ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਐਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲਾਨੀਅਤ ਹੈ ਭੂਮ ਕੇ ਬਸੈਤ ਹੈ ਭੂਚਰੀ ਕੇ ਜਈਆ ਕਹਿ ਨਭ ਕੇ ਉੜਿਆ ਸੋਚ ਰਈਆ ਕੇ ਬਖਾਨੀਐ ਫਲ ਕੇ ਬਚਿਆ ਤਾਏ ਬਾਂਦਰੀ ਕੇ ਜਈਆ ਕਹਿ ਆਦਿਸ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕੇ ਪਛਾਨੀਐ ਜਲ ਕੇ ਤਰਿਆ ਕੋ ਗੰਗੇ ਰਿਸੀ ਕਾ ਹੱਥ ਜਾਗ ਆ ਕੇ ਬਛਿਆ ਸੋ ਚਕੋਰ ਸੰਭਵਾਨੀਐ ਸੂਰਜ ਸਿਵਈਆ ਤਾਏ ਕੌਲ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਵਈਆ ਕੋ ਕਵੀ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਨਾਰਾਇਣ ਕੱਛ ਮੱਛ ਤੇਂਦੁਆ ਕਹ ਸਭ ਕੌਲ ਲਾਭ ਕੌਲ ਜੈ ਤਾਲਮੈ ਰਹਤ ਹੈ ਗੋਪੀਨਾਥ ਗੁਜਰ ਗੋਪਾਲ ਸਭੇ ਧੇਨ ਜਾਰੀ ਰਿਖੀ ਕੇ ਸਨਾਮ ਕੇ ਮਹੰਤ ਲਹੀਅਤ ਹੈ ਮਾਧੋ ਭਵਰ ਔਟ ਰੁਕ ਕਨਿਆ ਨਾਮ ਕੰਸ ਤੋ ਬਧਿਆ ਜਮ ਦੂਤ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੂੜ ਰੂਟ ਪੀਟਤ ਨਾ ਗੌੜਤਾ ਕੋ ਭੇਦ ਪਾਵੇ ਪੂਜਤ ਨਾ ਤਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖੇ ਰਹੀਅਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਜਗਤ ਕਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵੈਰੀ ਸਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਤ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਟਾਂ ਧਾਰੀ ਸਤੀ ਸਾਚੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਭੂਖ ਪਿਆ ਦੇਹ ਪੈ ਸਹਤ ਹੈ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਜਲ ਹੋਮ ਪਾਵਕ ਪਵਨ ਹੋਮ ਅਧੋਮੁਖ ਏਕ ਪਾਏ ਠਾਡੇ ਨਾ ਬਹਤ ਹੈ ਮਾਨਵ ਫਨਿਨ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭੇਦ ਵੇਦ ਅਕਤੇਵ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕੇ ਕਹਤ ਹੈ ਨਾਚਤ ਫੇਰਤ ਮੋਰ ਬਾਦਰ ਕਰਤ ਘੋਰ ਗਦਾਮਨੀ ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਕਰੇ ਹੋਈ ਕਰਤ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੀਤਲ ਨ ਸੂਰਤ ਤੇ ਤਪਤ ਤੇਜ ਇੰਦਰ ਸੋਨਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਭੂਮ ਕੋ ਭਰਤ ਹੈ ਸਿਉ ਸੇ ਤਪਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੇਨਾ ਬੇਚਾਰੀ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤਪਸਿਆ ਨਾ ਅਨਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੌਕਰੀ ਫਿਰਾਈ ਫਿਰਤ ਹੈ ਏਕ ਸਿਉ ਭੈ ਏਕ ਕੈ ਏਕ ਫਿਰ ਭੈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਦਾ ਪੁਰਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਮੋਹਨ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਹੈ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮਦਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਫਸ ਭੈ ਹੈ ਪੀਰਾ ਪਿਕਾਂਬਰ ਕਿਤੇ ਗਾਨੇ ਨਾ ਪਰ ਦੇ ਤੇ ਭੂਮਿ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਮਿ ਹੀ ਮਿਲਾਏ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰਦਾਰੇ ਛਤਰੇ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਹੀ ਕੋਸਲੋ ਚਲਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਦਾਵਤ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਦ੍ਰਭ ਕੋ ਦਲਤ ਹੈ ਮਾਨਸੇ ਮਹੀ ਪਾਉ ਦਿਲੀਪ ਕੈਸੇ ਛਤਰਦਾਰੀ ਬੜੋ ਅਭਿਮਾਨ ਭੋਜ ਦੰਡ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਮਾਨ ਥਾਰੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮੰਦ ਭੂਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਹੈ ਸਿਜ ਦੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਤੋਪਤੀ ਕੱਪੜ ਫੇਸ ਓਸਤੀ ਅਨੇਕ ਦਾ ਨਿਵਾਵਤ ਹੈ ਸੀਸ ਕਹਾ ਭਯੋ ਮਲ ਜੋ ਪੈ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਡੰਡ ਸੋਤਨ ਡੰਡਾ ਦਾ ਸ਼ਟਾਂਗ ਤੀਸ ਕਹਾ ਭਯੋ ਰੋਗੀ ਜੋ ਪੈ ਡਾਰਿਓ ਰਹੇ ਉਰਦ ਮੁਖ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਨਹਿਰਾਇਓ ਆਦਿਸ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਦਾਮਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਜਗ ਦੀਸ ਸੀਸ ਪਟਕਤ ਜਗ ਕਾਨ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾ ਦਸੇ ਮੁੰਡ ਛਟਕਤ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰੋ ਕੇ ਸੋਗ ਸਾ ਆਖ ਕੋ ਚਰਿਆ ਫਲ ਫੂਲ ਕੋ ਬਚਿਆ ਸਦਾ ਬਨ ਕੋ ਭ੍ਰਮਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੋਗ ਸਾ ਕਹਾ ਭਯੋ ਭੇੜ ਜੋ ਘਸਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਛਨ ਸੋ ਮਾਟੀ ਕੋ ਬਛਿਆ ਬੋਲ ਪੂਛ ਲੀ ਜਾ ਜੋਗ ਸਾ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਫੇਟੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਾ ਨਾਚੋਈ ਕਰਤ ਮੋਰ ਦਾਦਰ ਕਰਤ ਛੋੜ ਸਦਾ ਘਨ ਘੋਰ ਘਨ ਕਰੋਈ ਕਰਤ ਹੈ ਏਕ ਪਾਏ ਠਾਡੇ ਸਦਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰਹਤ ਬ੍ਰਿਛ ਫੂਕ ਫੂਕ ਪਾਉ ਭੂਮ ਸਰਾਵਕ ਧਰਤ ਹੈ ਪਾਹਨ ਅਨੇਕ ਯੁਗ ਏਕ ਠੌਰ ਬਾਸ ਕਰੇ ਕਾਗੌਰ ਚੀਲ ਦੇ ਬਿਚਰਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਮਾਦਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਜਲਿਨ ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨ ਦੀਨ ਕੈਸੇ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ
जैसे एक स्वांगी को जोगिया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बने कह दिखावई कहूँ पौन हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे वारी कहूँ दंड धारी होके लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचते नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर अगदहा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कासी बीत चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसीदार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फांस डक मार मार डार ही डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाई है तापना तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो जाप के किए ते जो पे पायत अजाव देव उदना सदीव तू ही उचरत है नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई अनल काज पंछी डोलबो करत है आग में जरे ते गत रांड की परत कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को योगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरा को रावदी माम सभी मानस की जात समय के पहचान बो करता करीम सोई राजक रही वोई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुर देव एक ही स्वरूप समय के जो जान बो देहुरा मसीह सोई पूजा अनिवाजो ही मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे एक बान खाक बाद आतसो आपको रलाव है अल्लाह भेग सोई पुराना और कुरान एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आग ते कनु का कोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फेर धूर ही समाएंगे जैसे एक नदे तरंग कोट उजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे केते काछ मछ केते उनको करत भच्छ केते अच्छ वच्छ होए सब पच्छ उड़ जाएंगे केते ना बीज आज पांच को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज हुआ तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंग वासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भरमाई फिरत है करवत सहत केते भूम में गणत केते सुहा पे चढ़त केते दुख का भरत है गैन में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के भीन जग जारी मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हरे गंदरा बजा हरे किन्नर सब पच हरे पंडित तपंत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा से ददा बदा वृद रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बासता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं ना आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताव आद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे दंडे मंडे प्रचंडे ब्रह्माथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे
ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना शोभंग अभूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय आदद्वय अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भर्मंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तं प्रभा आद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अक्षय आद अविक्तय अथापे विभुक्तं अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे ना नेहं ना गेहं ना शोकं ना साकं परे अंग पवित्रं पुनीतं अताकं ना जातं ना पातं ना मित्रं मित्रं ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मं ना भर्मं ना सर्वं ना साके ना परमं ना चर्मं ना कर्मं ना बाके ना सत्रं ना मित्रं ना पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं काज के मन के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तांबे कहूं अक्षर के पक्षर के से साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृदला धे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने ग्रेहं कहूं देव दोखं कहूं औखदि रोग के सोग सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जल गद्रव किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के प्रेष्ठ के रेष्ठ पन्या कहूं वेद विद्या कहूं वेमवाणी कहूं को की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शोध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुण कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछय आद अद्वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग अभूते तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा सुरपद में अनास अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अनुज काल करता सदी हरता असनाथ आसन डोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म ज्ञान जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भ्रम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योध पान जय जात पान नहीं शत्रु मित्र जय ने गे ने चयन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म ज्ञान नहीं भ्रम भेग जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे नहीं पितृमार जय नाम थाम नहीं भरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सार जय त्रास वास नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप जोग साधन दुरंत तन सीध घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत
ਕਈ ਜਤਨ ਜੋਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤਦ ਪਾਵਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਈ ਉਰਦ ਬਾਰ ਦੇਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਉਰਦ ਮਦ ਪਾਵਕ ਝੁਲੰਤ ਕਈ ਸਿਮਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਚਰੰਤ ਵੇਦ ਕਈ ਕੋਪ ਕਾਵ ਕਥਨ ਕਤੇਵ ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪੌਨ ਹਾਰ ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਟ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਆਹਾਰ ਕਈ ਕਰਤ ਸਾਗ ਪੈ ਪੱਤਰ ਭੱਛ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਦੇਹ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਤੱਛ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਨ ਗੰਧਰਵ ਰੀਤ ਕਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀ ਜਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਹੂੰ ਤੀਰ ਧਰਮ ਕਈ ਦੇਹ ਭਾਗਾ ਰਟਨ ਕਈ ਦੇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜੰਤ ਕਈ ਕਰਤ ਫਾਂਦ ਫਾਂਤਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਈ ਤੀਰਤ ਤੀਰਤ ਭਰਮਸੋ ਭਰਮ ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਦੇਵ ਕਰਮ ਕਈ ਕਰਤ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਯੋਗ ਧਰਮ ਕਈ ਸਿਮਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਤਰਸੋ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਨੀਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਹਸਤਦਾਨ ਕਹੂੰ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਮੱਕੋ ਵਖਾਨ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਬਿਰਧ ਚਾਰ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਜਜ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਹੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਹੂੰ ਅਰਗਦਾਨ ਕਹੂੰ ਪਿਤ੍ਰ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਚ ਕਹੂੰ ਗਾਨ ਗੀਤ ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰ ਕਈ ਭਜਤ ਪਗ ਏਕ ਪਗ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਈ ਨੇ ਦੇ ਕਈ ਗੇ ਵਾਗ ਕਈ ਭ੍ਰਮਤ ਦੇਸਨ ਉਦਾਰ ਕਈ ਜਲ ਨਿਵਾਸ ਕਈ ਅਗਨ ਤਾਪ ਕਈ ਜਪਤ ਉੜਦ ਲਟਕੰਤ ਜਾਪ ਕਈ ਜਪਤ ਜੋ ਕਲਪੰਕ ਪ੍ਰਜੰਤ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਤਾਸ ਪਾਇਤ ਨਾ ਅੰਤ ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਟ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਦਬ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਮੁਰਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਸਗਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਪਾਨ ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰ ਜਗਦਾਨ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਏਕ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ਫੋਗਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਵਿਹੀਨ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਜੈ ਜੰਪੋ ਜੁਗਣ ਜੂ ਜਵੰਗ ਭੈ ਕੰਪੋ ਮੇਰ ਪਿਆਲ ਭੁਵੰਗ ਤਬ ਤਾਪ ਸਰਬ ਜਲੇ ਰੁਥਲੰਗ ਧਨ ਧਨ ਉਚਰਤ ਇੰਦਰ ਕੁਮੇਰ ਬਲੰਗ ਅਨਖੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਅਭਿਅੰਗ ਅਨਖੰਡ ਅਭੂਤ ਅਛੇਦ ਅਛਿਅੰਗ ਅਨਕਾਲ ਅਪਾਲ ਦਿਆਲ ਅਸੁਅੰਗ ਜੈ ਠੱਟਿਆ ਬੇਰ ਅਕਾਸ ਭੂਅੰਗ ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੰਗ ਜੈ ਦਛਿਅੰਗ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਬਰੰਗ ਸਭ ਕੀਨੀ ਦੀਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾ ਜੈ ਰਚੰਗ ਸਰਮ ਮਕੀਨ ਮਕਾਂ ਜਹ ਰਾਗਨਾ ਰੂਪਨਾ ਰੇਗ ਰੁਖੰਗ ਜੈ ਤਾਪਨਾ ਸਾਪਨਾ ਸੋਗ ਸੁਖੰਗ ਜੈ ਰੋਗਨਾ ਸੋਗਨਾ ਭੋਗ ਭੁਅੰਗ ਜੈ ਖੇਦਨਾ ਭੇਦਨਾ ਛੇਦ ਛਯੰਗ ਜੈ ਜਾਤਨਾ ਪਾਤਨਾ ਮਾਤ ਪਿਤੰਗ ਜੈ ਰਚੰਗ ਛਤਰੀ ਛਤਰ ਛਿਤੰਗ ਜੈ ਰਾਗਨਾ ਰੇਖਨਾ ਰੋਗ ਫਣੰਗ ਜੈ ਦੁਆਖਨਾ ਦਾਗਨਾ ਦੋਖ ਗਣੰਗ ਜੈ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ ਦਾ ਚਾਰ ਕਰੀ ਨੌ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ਰਜ ਤਾਮਸ ਤੇਜ ਤੇਜ ਕੀਓ ਅਨੁਭਵ ਪਦ ਆਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਿਓ ਸਿਯ ਸਿੰਦਰ ਬਿੰਦ ਨਗਿੰਦ ਨਗੰਗ ਸ੍ਰੀ ਜਛ ਗੰਧਰਾ ਭਣਿੰਦ ਭੁਜੰਗ ਰਛ ਦੇਵ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਰੰਗ ਨਰਪਾਲ ਨਿਰਪਾਲ ਕਰਾਲ ਤ੍ਰਿਗੰਗ ਕਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਭੁਜੰਗ ਨਰੰਗ ਰਜ ਅੰਡਜ ਸੇਤਜ ਉਦ ਭੁਜੰਗ ਕੀ ਦੇਵ ਦੇਵ ਸਰਾਜ ਪਿਤੰਗ ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤ ਨ ਜੋਤ ਜੁਤੰਗ ਜੈ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤ ਨ ਭਰਾਤ ਸੁਤੰਗ ਜੈ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਭੁਵੰਗ ਜੈ ਜੰਪੈ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਜੁਅੰਗ ਨਰ ਨਾਰ ਨਪੁੰਸਕ ਜਾਏ ਕੀ ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜਜ ਭੁਜੰਗ ਦੀਏ ਗਜਬਾਜ ਰਥਾਦਿਕ ਪਾਂਧ ਗਣ ਭਵ ਭੂਤ ਭੇ ਭਾਵੂਤ ਭਵਿਕ ਭਵਾਨ ਤੁਵੰਗ ਜੈ ਅੰਡਜ ਸੇਤ ਜੇ ਰਜਨ ਭੂਮਕਾਲ ਪਤਾਲ ਜਲੰਗ ਰਜ ਪਾਵਕ ਪਵਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲੀ ਬਨ ਜਾਸ ਕਿਉ ਫਲ ਫੂਲ ਕਲੀ ਭੂ ਮੇਰ ਕਾ ਨਿਵਾਸਿਤੰਗ ਰਜ ਰੋਜ ਕਾ ਦਾ ਚੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤੰਗ ਦੁੱਧ ਚੰਦ ਦੀਨੀ ਸਾ ਦੀਪ ਦਈ ਜੈ ਪਾਵਕ ਪਵਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਈ ਜੈ ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਏ ਜੈ ਛਤਰ ਉਪਾਏ ਛਪਾਏ ਦੀਏ ਜੈ ਲੋਕ ਛਤਰ ਦਾ ਚਾਰ ਰਚੇ ਨਰ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਚੇ ਅਨ ਧੂਤ ਅਭੂਤ ਅਸ਼ੂਧ ਮਦੰਗ ਅਨਗਾਦ ਅਭਿਆਦ ਅਨਾਦ ਗਤੰਗ ਅਨਖੇਦ ਅਭੇਦ ਛੇਦ ਨਰੰਗ ਜੈ ਚਾਰ ਛਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰੰਗ ਜਹ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਗ ਰੁਖੰਗ ਜੈ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਜੋਗ ਜੁਗੰਗ ਭੋ ਭੰਜਨ ਗੰਜਨ ਆਸਰੰਗ ਜੈ ਬੰਧਨ ਦੇਵ ਦੇਵ ਨਰੰਗ ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਰਚੇ ਮਣ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸੁਚੇ ਅਨਭੰਜ ਪ੍ਰਭਾ ਅਨਗੰਜ ਬ੍ਰਿਤੰਗ ਜੈ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪੂਰਮਤੰਗ ਅਨਖੰਡ ਸਰੂਪ ਡੰਡ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈ ਜੰਪਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭਾ ਜੈ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਅਨੰਤ ਕਹਿ ਜੈ ਭੂਤ ਅਭੂਤ ਨਾ ਭੇਦ ਲਹਿ ਜੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਵ ਜਪੈ ਸੋ ਸਿੰਧ ਅਦੋ ਮੁਖ ਤਾਪ ਤਪੈ ਕਈ ਕਲਪਨ ਲੋ ਤਬ ਤਾਪ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਪਾਨ ਪਰੈ ਜੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਸਭੈ ਤਜ ਹੈ ਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਕੋ ਜਪ ਹੈ ਤੇਉ ਯਾ ਭਉ ਸਾਗਰ ਕੋਤਰ ਹੈ ਭਉ ਭੂਲ ਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰਧਰ ਹੈ ਇਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕੋੜ ਬ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਸਾ ਸੁਤੀ ਜੋ ਆ ਰਸ ਕੇ ਚਸ ਕੇ ਰਸ ਹੈ ਤੇਉ ਭੂਲ ਨਾ ਕਾਲ ਫੰਦਾ ਫਸ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਅਗੰਜ ਆਦ ਦੇਵ ਹੈ ਭੰਜ ਭੰਜ ਜਾਣੀਐ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਹੈ ਸਦਾ ਗੰਜ ਗੰਜ ਮਾਨੀਐ ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਹੈ ਸਦਾ ਭੇਵ ਭੇਵ ਨਾਥ ਹੈ ਸਮਸ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਸਾਥ ਹੈ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹੈ ਭੰਜ ਭੰਜ ਹੈ ਸਦਾ ਗੰਜ ਗੰਜ ਗੰਜ ਹੈ ਸਦੀਵ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ
अनूप रूप स्वरूप है, अच्छेद तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है, न रोग राग रेक है, अजोक दाग तक है, अभूता भ्रम भेक है। न तात्मात जात है, न पाच्यन भरण है, अदेक सेक भेक है, सदयु विश्व भरण है। विश्वम्बर में सनात है, विषेक विश्व भरण है, जमीजमान के विखय सदयु करम भरम है। अद्वैक है, अभेक है, अलेक न जानिए, सदयु सर्व ठौर में विषेक अन मानिए। न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र में से आवई, पुराण अकुराण नेत नेत कह बतावई। न कर्म में, न धर्म में, न भ्रम में बताइए, अगंज आदेव है, कहो सो कह सपाइए। जिमी जमान के विखय समस्त एक ज्योत है, न घाढ़ है, न बाढ़ है, न घाढ़ फाढ़ होत है, न हान है, न बान है, समान रूप जानिए। मकीन मकान प्रमाण तेज मानिए। न देह है, न गेह है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, न धोग है, न दाग है, न द्वैग है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौद है, न साग है, न संख है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न शाह है, न शाको कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाव है, न छल है, न छत्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाव है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेक है, न कर्म है, न धर्म है, जन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, काल खंड रूप है, छेद है, भेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदयु दयाल रूप है, अगंज है, भंज है, अभर्म है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंध है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चयन वरण है, व्यंत है, अनंत है, अनंत जानिए, भूम बीज है, सदा अच्छेद तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप लेखिया, दोग दाग तक है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, भंग है, अनंग है, गंजसी विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोह कार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपी न राधपी करंत सेव है, सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है, अगाध आदेव की अनाद बात मानिए, न जात पात्र मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए, सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देख आनंद भान सोध है, तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण भीन, आद नाद अगाद ब्रगसो धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद ब्रग पार, हस्त कीट विखय बसे सब ठौर में निर्धार, जात पात न ताद जागो मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर विखय रम्यो जय चक्र चैन न चित्र, आ देव दार मुरद अगार नाद अनंत, आद अंत न जानी अभिखा देव दुरंत, देव भेव न जानी जे मरम भेद कतेब, सनक औ सनकेश नंदन पावही न हसेब, जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेर नेर पुकारी सी सौर शिव सक्र अमुख चार, सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप, आ देव गा तेज नाद मुरद ताप, जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो बिरा धीरा जा राज प्रवीण, जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैष्णव के भिखा बिराज सूत्र भी व नाहे, गुड़ गौड़ न भील भी कर भ्रम से स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूम कांस अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म प्रभिहीन, तीर जात न देव पूजा गोर के न अधीन, सर्व सपत पतार के तर जानिए जय ज्योत, शेष नाम सहस्पन्न नेत पूरन होत,
सो सो हटै सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पढ़त पढ़त थके महाकवि गणत गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम तुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव दानो मूड मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपद आद नाद नाथ अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे न ने सने अभेह नाद जीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हकर्ता सर्व दयालत भेक सर्व करता सर्व हरता सर्व दयालत भेक चक्र चेना बरंजा को जात पात न भेख रूप रेखना रंग जागो राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अन भंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आ देव पाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार भरन चेन चक्र जागो चक्र छेन कार जात पात ना गोत्र गाता रूप रेखना भरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भो को भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरना श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भवे भवान प्रमाण देव अगंज आद अंतन आ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेदा कीन तौन प्रसार देव देव गंधर्व किन्नर माछ काछ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ का हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघा डंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरना पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाव सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जानिए सब विचार आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्याज करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई से रुद्र मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मध जागो भूत भगवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार हार हार थके समय नहीं पाई है तह पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपच्छर अपार सो सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बितैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक औ तरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म कवन जो को भोग है कवन धर्म अपकर्म दोहरा कहो ससम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को क्रम है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा छेद प्रकाश दोहरा कहा नेम संयम कहा कहा ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन

दुर्जंदल लंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदृत चचरासुर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ गते अक्षय अखंडे तेज दंडे खंड दंडे अलख मते जय जय होसी मैका सुर मर्दन राम कपड़दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट दंडन रूपते चंडासुर चंडन बंड विमन विहंडन धूम्र विनंसन महक मथे दानो प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्द अधे जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन आलवृते डावरु डवंके बबर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फादे आयुध बांधे सैन में मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असी झमके फुंक फनंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जो जिते सरदार बिबरखन दोष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दोष्ट मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सोचा निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्तासुर आचन जोन प्रमाचन हृदय नाचन धर्म प्रते सुरोणत अचिंती अनल बेंती जो जयंती खड़क धरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे आगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाह तेज तुलंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्चुर हरण धूम दुकारण द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगरु घमंकन शत्रु झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रदासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाये अगमताहे एक वृते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आदि कुमार अगाध प्रते सुर नर मुन बंदन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंगणी प्रसोहन स्वर नर मोहन सिंगारो बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन वाय पताल काश अनले संकट निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तुंद तबे दुग दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक बितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी छात्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखेंगी अलग भुजंगी तुंद तरंगण तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमन के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम्ब चक्र निसोम्ब मथे बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुसरनासे सुभृत सुवासे दृष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी भेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंट का विराजय रुण जन बाजय भ्रम भय बाजय सुनत सुरंग कोकल सुन लाजे किल्विक भाजय सुख पराजय मद उरंग दुर्जन दल दजय मंथन रिजय सबैना पजय रोरण जय जय होसी मै कासुर मर्दन चंड चकर्तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दोष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शोध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाद गते ब्रड लाज विहंडन चक्षुर तंडन तेज प्रचंडन आदवृते सुर नर प्रद पारण पति धारण दोष्ट निवारण धोख हरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन विश्व विदन सन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्नत उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाल बाण बोली बाण संत पनाहण गूढ़ गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद गाद ब्रते दुग दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दोष्ट प्रदाय अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मै कासुर मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकन छत्र झमकन दामिन दमकन आदृते डुग डुगी तमंक बाग भवंक भुजा फरंक सुध गते
जय जय हुसी मह कासुर मर्दन आज गाद नाद मते चचरासुर मारन नरक निवारण पदे सारण एक भटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पदे धारे मुंड मथे जय जय हुसी मह कासुर मर्दन धूम्र विदंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकरदन दानो अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखन दुर्जन धरकन अतुल अमर खंड धर्म ध्वजे धूमराज विदंसन सुरोण चंसन सोम निसुंब निपात निसुंब मथे जय जय हुसी मह कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जदब भूतन भय अनंत कहो तो कहो जताम त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद भय भूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोग रहत जय नेत नेत सब भेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनछिज तेज अन भय प्रकार दाता दुरंग अद्वय अनाद सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभा सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा सर्व अब चल पार जानी ना जय जय रूप रेख बास तास कह कौन भेख कह नाम तास है कवन जा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विराज सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेक नहीं रंग राग अनछिज तेज अनभिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेर निर्दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्रुद्या द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेर निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर रहे संत मार्ग निमन गा रहे पज पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सबको व्रत पा रहे फोकत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दयानी दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दू दोखन को दल दुजन के पल में दंडार खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रिय संभार पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचार रोजी हिराज लोक राजिक रोग रोहन की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवे के भवान बनाए देव अदेव खपे हमेव ना भेव लगे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब धके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात स्यो केन श्री पद्मापद पाए आद अनंत काद अधवेक सो भूत भवे न भवान अभय है अंत विहीन अनातम आव अदाग अदौद्र अछेद्र अचय है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद महापद ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय है देव ही सने सबोतन नेह व्रक्त अगह है छह है जान को दे ता जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुसुंदर श्री परमावत लय है रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घात तहु तनेक ना लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूह न भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव देव अभेद में सब ही कर ध्यावे भूम का पताल रसातल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नी पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज सके सभी कुजिया सुर हार परे रात न आवे नारद से चतर आनंद से रुम नारी से सब हु मिल गायो वेद के देव ना भेद लखियो सब हार परे हरहत न आयो पाए सके नी पार वापस सेज सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय को मितोज सब जग छायो वेद पुराण के देव गुरा भेद निरपान सब बज हारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेद ध्यान छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना शोक ना संग तिहारे
आदय अनादय अगाधा भेग अदभेग जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ गोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत हारे देश प्रिय होकर भेद तपोधन केस धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छत छत्र के धरिया छत्र धारियो के चलैया मा सतरन के साल हैं दान के दिवैया महमान के बड़े अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं जोध के जितैया विरोध के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया महमान हु के मान हैं ज्ञान हु के गाता मा बुद्धता के दाता देव काल हु के काल महाकाल हु के काल हैं पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर गर देजी कुन गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बादे आरब के अरबी अराधे तेरे नाम है फरागी फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मराठा मंगले तेरी मनसो तपस्या करे दृढ़ व्रत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीश नी आवे तिब्बती ध्याय दो दो को दलत है जिने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन्य धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान बान को महेश गंग धान को अभेद कही अत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहूं पे नदीन साध अधीन कही अत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सरब विद्या के उदारे अपार कही अत है हाथी की पुकार पाले पाछे चौपहुंचात चाहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है केते इंद्रवार केते ब्रह्मा मुखचार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दही अत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जाच कही अत है करते है विचार पहना पूरन को पावे पार ताहिते अपार निराधार लही अत है पूरन अवतार निराधार है ना पारावार पाइये ना पार पे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप होके राशि है नासी कह कह मानी है जंत्र हूं ना जा जा की बाप हूं ना मायता की पूरन प्रभागी छटा पूरन प्रभागी सो छटा कहन मानी है तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तरह के राशि को सारे के शुद्धता को घर के शुद्धता की सार है कामना की

के पूरन प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के शुद्धता को वास है, के बुद्ध को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचाए, मान को दबैया, जम जाल को कटे, कामना को कर है, तेज को प्रचंड, अखंड को खंडे, महिपन को बंडे, के स्त्री है ना नर है, विश्व को भरने के, आपदा को हरने के, सुख को करने के, तेज को प्रकाश है, पाइये न पार, पारावार हुको पार जागो, कीजर विचार सो विचार को निवास है, हिंगला हिमालय गावे, हब सी हलब भी ध्यावे, पूर्वी न पार पावे, आसाते अनास है, देवन को देव, महादेव हुके देव है, निरंजन अभेव न दद्व्या विनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण के, सेवक अधीन के, टैया जम जाल के, देवन के देव, महादेव हुके देव, नाथ भूम के भुजैया, मुहया मां बाल के, राजन के राजा, मां साजू के साजा, मां जोग हुके जोग, धरैया ध्रुव छाल के, कामना करे के बुद्धता को हरे के, शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के, शीर कैसी छीरावा, छात कैसी छतरा ने, छपा कैसी छप, कालिंद्री के कुल के, हंसनी सी सिहारो, हीरासी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली, सातो सिंध रूल के, परासी पलाऊगढ़, रूपा कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद, नीके रही झूल के, चंपा सी चंदरी कोट, चांदनी सी चांदा को गाड़े, कीरा तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश, कमावगण काशीपुर, सीसासी सिरंगाबा, नीके सोई यत है, हिमासी हिमालय हर, हाब सी हल्लब्बा ने, हंस कैसी हाजीपुर, देखे मोही यत है, चंदन सी चंपावती, चंद्रमासी चंद्रागीर, चांदनी सी चांदागढ़, जोन जोही यत है, गंगा सम गंगधार, बकांसी बिलंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोही यत है, फरासी फिरंगी, फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी, तेरे गीत गाई यत है, बखरी गंधारी, बखरी गंधारी गोर, गखरी कर देदाचारी, पौन के हारी, तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूपा कमाओ, सर्व ठौर में विराजे, जहाँ जहाँ जाइयत है, पूरन प्रतापी, जंत्र मंत्र ते अतात पी नाथ, कीरत तिहारी को ना पार पाइयत है, तो प्रसाद पादड़ी छंद, अद्वै अनास आसन अडोल, अद्वै अनंत उपमा तोल, अच्छा स्वरूप अव्यक्त ना आजान बाओ, सर्वा प्रमाद, जत महीप बंतन प्रफुल्ल, शोभा बसन जत प्रडुल्ल, बंतन दुरंत खग मृग महान, जत प्रफुल्ल सुंदर सुजान, फुल तंग प्रफुल्ल लत मोर सिर ढुर जान, मन मत चौर, कुजरत कमाल।

रोषं ब्रत करुणा निधान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान बन तन महीप जल तल महान जहता प्रसो करुणा निधान जगमगत तेज पूरन प्रताप अंबर जमीन

लेकिन वेख तू ने ता सारियां चीटियां मार दितियां, ए क्यों कीता? ए ता अन्याय कीता है। चलो एक आदि जिन्हें तेन डंग मारना किया ते ओनू जे तू मारदा ते आपां कहिंदे आ कि हाँ जी इन्हें ये करना किया, डंग मारिया, दंदी बटनी की, तूने ओनू मारिया, बाकियां दा की गुनाह है, की दोष है? सारियां नू तूने मसल दिता, सारियां नू मार दिता। ते कहण लगा सतगुरु महाराज मैनू गुस्सा बड़ा चढ़िया सी, ते नाल मैनू पता भी नहीं चलिया उस वेले, क्योंकि बेशक एक चीटी ने मैनू लड़ना कीता, डंग मारना कीता, बाकियां ता नहीं होया, लेकिन जे मैं एक नू ए वेखदे रहिंदा ते बाकियां ने भी मैनू दंदी बढ़नी सी, बाकियां ने भी मैनू मारना। उन्होंने इस गुनाह दे विच उहदा साथ दिता, उह सारे रल करके आए, तां करके मैंने काड़ी दे विच रफ्तार दे विच सारियां नू रगड़ दिता। महाराज ने वचन किया कि इस तरह ही हुंदा है। कई बारी की हुंदा

सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे इस दुज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न हैं। रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर।

सर्व समूह खालसा जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पतका राखा आप, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहिब। बोलो जी, खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब, अमृतसर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दार मेले। बोलो जी, श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन दार मेले। बोलो जी, हम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में, शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मेले। बोलो जी, भगौड साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगन जी, जी नानक जीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवां जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन दार मेले। बोलो जी, सर्व समूह खालसे जी को नगारियां, निशान साहिबां संजगत, तख्त सच खंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मेले। बोलो जी, सत श्री कालपुग जी का खालसा जी साहब। बोलो जी, सत श्री कालपुग जी का खालसा जी साहब। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज, अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सर्वत काबला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।